स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम, शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूढ़ मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा, क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है। भज गोविंद,

और फिर कहते हैं मेरी बात सुहात न काहू, ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है। ताते उपजत है उर दाहू, और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

दुख जीवन में है, ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं, पराए से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्खता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और कभी कभी कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है, भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के

लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है उस स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात में समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं। मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है। पर विचार करना चाहिए, अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन ढिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए। रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा। नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया। वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहु न कराही। बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही। किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने। बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाए। तो भाई देखते ही देखते ही ये स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा। तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी, इसलिए काल चुरैया चुग रही। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए कि लाज नहीं भइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है माथे पर, ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

यह रुचै मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूँ, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचै मुख नाम न आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूँ शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूँ कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है, लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किसो, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजही जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई, मन लागो अति झूठ सो तज साच ही सुख मूल। मन लग गया इस झूठ में, अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, तब आपको लगता है भजन हो पाएगा। कितना क्षणभंगुर ये देह है,

झिली ना झिली, इसीलिए कहा है हरि का नाम रटले री रसना, फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए, सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए, और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं, और जो

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई, मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो, समय पर करो, मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगा कर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन है सचु पाए। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

और आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं, प्रार्थना की है युगल चरणों में। सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

वाणी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: शंभु शंभु शंभु शंभु शिवा महादेवा
1: शिवा महादेवा।
0: और रेडियो महारानी भी सुनते रहिए क्योंकि उसमें काफी हटके चीजें आती है, इसीलिए उनका टैगलाइन भी कुछ हटके है।

0: The most powerful leadership tool you have is your own personal example. You are listening to the thoughts of Mr. Sonu Sharma, who is a life coach and motivational speaker. Keep listening, Radio Maharani, Kurt Hatke.
1: हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया, फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए. अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आकर के, है ना. जैसे हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ. तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है. चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में. बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट. सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचो. आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना. दारू पी ली कुछ देर के लिए, भूल गए, फिर याद आ जाएगा. जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी. तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे हो. यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है. ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर उसको कैसे फेस करें. क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझ गए ना. और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है. बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, अगर इस बात को हम समझ पाए तो. आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद. आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला तो असर ज्यादा होगा. जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला. तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना या उल्टा सीधा आपको बोलना या आपको तंग करना. तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, तो जैसे आप अंदर से बोल देते हो ना कोई बात नहीं, ये क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है. ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है. जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वांट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है. गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां. फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती है, है ना. अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है. ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, मैं कितनी बेवकूफ हूं. ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में, हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूँ चीजों को. नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है. कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट. जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे. जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है. विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट. इसको ध्यान से समझना. तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट. तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया. तो इससे आपने क्या सीखा कि आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली बड़े डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने. कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हम क्या है वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं, 10 दुकानों में जाएंगे ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे, 100 रुपए भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी वेरी वेरी क्या कहूँ, वेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे, और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ, एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो, ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूँ, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा। मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने वान करा, लगा दो बियर, लगा ये करो, बाइक ना लिटा के मोड़ेंगे, मैंने सारे काम करे हैं, ऐसा नहीं करे हैं, लिटाए भी और कई बार खुद भी लेट गया, और पीछे वाला कहता है यार मैंने क्या गलती की, तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है, आप समझ रहे हो। तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करो, मैं कह रहा हूँ समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है, तो मैं आपको कैसे बोलूँ कि गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया, समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मिल रहा है आपको जवाब, मिल रहा है। एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इन टू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते, पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो ये गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना, तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके, हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं, अपने आप को ये बोलो। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए। अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी, जिसको आप बड़ी समझ रहे हो। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या है, छोटी क्वालिटी है। डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार, पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है।
2: माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट, हाउ शुड वन मेंटेन मेंटल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ माइंड इन सिचुएशंस ऑफ लाइफ एंड डेथ?
1: बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है। जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हो उन्होंने मरना ही। अब मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूँ, बिकॉज मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी मैटर ना करे, समझ गए ना? वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना आज। हम खुद भी मर सकते हैं, तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो। ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं। ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है? देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर। आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी है। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ। अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बातें। उसके अलावा आपके आसपास में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब भी आपके ऊपर असर ना हो, और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। क्या ये हो सकता है? पहले तो सवाल ये है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता है? सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है? धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आ जाए, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता। मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो, मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए, मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है। वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है? दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अभी हमको समझ नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जांपल दिया था, एक रोल का एग्जांपल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, शायद आंसू भी आ रहे होंगे, शायद आप हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से यू विल ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि क्या होगा, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये गेम है, लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो, तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे? जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों? मैं बीच में आ गया ना, बस इसको ध्यान से समझ लो। ये बात पकड़ में आ रही है ना कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर दिया। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा, एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मतलब हो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गेम में, डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना? खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को एक खेल की तरह देखें। मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है, माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, क्लियर है ना। जो हमारे थॉट्स है वो सॉफ्टवेयर के जैसे है, बॉडी हार्डवेयर के जैसी है, जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है। सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी, क्लियर हो रहा है ना। तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, तो मेरे लिए लाइफ क्या है, मैं दोनों से ही अनटच्ड हूं, ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं। बन गया ना खेल, पहचानना की जरूरत ही नहीं, आप हो, आप इस बॉटल से अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है। आप बॉटल को देख रहे हो, बॉटल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है? फैक्ट है भाई, आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती, ये फैक्ट है या इल्यूजन है? फैक्ट है, तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है, क्लियर हो गया। तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को, तो अब इससे क्या होगा, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के, लाइफ आपके लिए खेल जैसी हो, मतलब एक कमाल का खेल। अब खेल क्या है कि किस तरह से इस हार्डवेयर को, मतलब कि इस बॉडी को, और इस सॉफ्टवेयर को मतलब कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए, इस बॉडी को डिजाइन किया जाए, और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स है, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए। तो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खेल है, समझ पा रहे हो। तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे, आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपको गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो, फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो, पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो, ऐसा नो नहीं पहुंचते हो, टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो, आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो, धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है, आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल में वीडियो गेम में क्या फर्क है, वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है, जिंदगी के खेल में कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो, नहीं तो आप करोगे क्या, अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं, और बेटर, बाहर नहीं अपने अंदर। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको यह तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी, क्यों बोलना है मत बोलो, क्यों ऐसी बातें बोलनी है जिसकी वजह से कलेश होने वाला है, या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ, कितना मजा आएगा खेलने में। मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी, बीमार हो गए, अभी क्या होगा, बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा, दुखी हो जाओगे, दुखी क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है, बीमार होगा उस बीमारी को देखो, समझ पा रहे हो, क्या मुश्किल है करना, बहुत आसान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो। अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई, अब मैं क्या करूं, अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो, या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ये ठीक होने में और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है। तेरी डी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, 10 दिन में गायब, समझ गए? तो देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। ठीक है, खेल चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क पड़ता है? जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है, जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है। खेल की तरह देखो, बिजनेस को खेल की तरह देखो, लाइफ को खेल की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो। ये हम नहीं सोचते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना वो फटाफट से हमको मिल जाए। तो उस चक्कर में आप चिंदी बन जाते हो, बुरा लगेगा सुनने में, बट चिंदी बन जाते हो। समझ ही 5-10 हज़ार रुपए वाली बन जाती है। उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, उस वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धंसते चले जाते हैं। क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है। सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं। आ रहा है ना पकड़ में? चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है, समझ गए? आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है। ये धीरे धीरे समझना है आपको इसको, ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी में, क्या फर्क पड़ता है? खेल है। बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे? कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली। अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, बस अपनी लाइफ ही सीरियस है। अरे पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है। अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए तो ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्या मूर्ख वाली हरकतें कर रहे हो। बी मैच्योर, बी वाइज, समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। बिजनेस में लॉस लग गया, मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाले, क्या हो गया? खेल है। अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली। अरे मजा आ गया, खेल है, समझ रहे हो? यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है। देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है, ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। रियल लाइफ जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से 10 साल पहले, आज भी वैसे जी रहे, रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं, क्या मजा है, सेम लेवल पे। इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं, आपको भी थका देंगे, लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गया ना? बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना, लोगों के अंदर जान है क्या? अरे नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे। बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल के करेंगे, जो कर रहे हो खुल के करेंगे, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे, समझ गए? इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए ये खेल है। लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है, सोच सकते हैं? सोचते नहीं, लोगों को सोचने में डर लगता है, हो सकता है, बहुत आसान, देख सकते हैं मेरी आंखों में, झूठ नहीं बोल, बहुत आसान है। अगर खेल समझ जाओ तो, खेल समझ आए तो, समझ गए ना? मेरा पति है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है, उसने पहले भी वो किया था, अब जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं, हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है, अब वो सारा कुछ आ गया, मैं क्या करूं, अब वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रही हूं, समझ रहे हो? ये क्या गेम चल रहा है यार, इसको आराम से समझो, इसको खेल की तरह देखो। लग गई तो क्या हो गया, लगी हुई है लाइफ में, सबकी लगी हुई है, क्या हो गया? खेल है, खेल है जी, अभी लगी हुई है, कल बेटर हो जाएगी लाइफ, जरा सा कुछ अच्छा हो जाएगा, आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है जी, पार्ट ऑफ लाइफ है, कल एक अच्छी जॉब लग जाएगी, हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये गेम है। बी एडवेंचरस, बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ. अगर ऐसे आप बन सको, जो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो कहां है फियर ऑफ डेथ? बताओ. इफ यू नो दैट कि ये बॉडी जिसको हम डेथ बोलते हैं, इस बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, मरनी ही मरनी है, जानी जानी चाहिए. ये बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जो इससे कनेक्टेड है, वो जब ये बॉडी नहीं तो वो सॉफ्टवेयर कहां है? समझ गए? तो सॉफ्टवेयर भी गया, हार्डवेयर भी गया, बचा क्या? मैं बचा, ये मैं नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है, और मैं हूं कौन, ये नहीं पता, ये नहीं पता. तो फियर ऑफ डेथ निकल जाता है. कोई और भी अगर गया तो क्या गया? बॉडी गई ना, कुछ है जो नहीं मरता है. और वो हमको समझ आ जाए कि वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है और कुछ नहीं है, बाकी सब मरता है, सब मरता है जी. ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता. कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, जब से दुनिया थी, है और जब तक रहेगी, वो नहीं मरा. अगर हमको समझ आ जाए कि मैं वो ही हूं, तो तब ये खेल कैसा होगा? समझ पा रहे हो? मतलब इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कैन नॉट डाई, एंड इवन इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, दिस कैन नॉट सर्वाइव, दिस हैज टू डाई. It's the part of the game.

0: आज मैं आपको बताता हूँ हेलमेट ना पहनने के दो फायदे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
0: पहला फायदा, आपके ऊपर मूवी बनाई जाएगी, क्योंकि सार फूटने से आप गाजनी बांध सकते हैं।
2: बहुत तेज हो रहा है।
0: दूसरा फायदा, आपकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि हार सिग्नल पर वो आपको रोक ही लेंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी, हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी है।

0: कबीर ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरोड़ सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई देखिए, मॉर्निंग एक्सप्रेस में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज वेदर की। मौसम का क्या हाल है अपने शहर में ये जान लेता है। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 43 डिग्री जाने वाला है। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 31 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 24 मिलने वाली है। ह्यूमिडिटी मिलेगी 25%, यानी कि दिन अच्छा खासा गर्मी भरा रहने वाला है। सनी सनी आज का पूरा दिन है, कोई भी बारिश के आसार नहीं है। सो इस गर्मी से अगर बचना है ना, तो हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिएगा और जितना हो सके ना पानी के साथ में सीजन फ्रूट्स भी खाइएगा, सो दैट कि पानी की कमी ना फूड से भी पूरी हो जाए। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
3: कर रहे हैं आप, सुनो तो
4: इरशाद।
3: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
4: तुम्हारे नंबर पे?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: और उन्होंने पूछा क्या?
4: क्या पूछा?
3: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
4: क्या बात कर रहे हो?
3: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
4: अच्छा,
3: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
4: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
3: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
4: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
3: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
4: बाय।
3: सुनो तो, कहाँ चली?
4: बाय।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। जब गाड़ी में बजे आरजे अंजनी की आवाज, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट क्लास।
3: What I want is Sony, yeah. Mithi kala karke tu na ja chhad ke.

हंसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

कभी आपने सोचा एक छोटा सा सॉरी कितनी कमाल की चीज करता है हमारी लाइफ में? जितना भी खराब रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन एक सॉरी उस रिलेशनशिप को हील कर देता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल सॉरी डे। और अगर इस दिन की बात करूँ तो ये दिन जो अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और फॉरगिवनेस के मैसेज देता है। और अगर बात करें सॉरी की, तो सॉरी बोलना आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये जानता है, सबसे पहले तो हमें ये दिन ये याद दिलाता है कि जो ईगो है ना वो बहुत छोटा, यानी कि हमारा रिलेशनशिप हमारे ईगो से बड़ा है। सेकंड थिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है सॉरी बोलने से, हीलिंग और पॉजिटिविटी आती है। और कभी कभी ना हम अननोइंगली किसी को हर्ट कर देते हैं, ऐसे में एक जेन्युइन अपोलॉजी बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। इसीलिए आज का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सॉरी बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है वो आज मैंने आपको बताया ही है। सो आज का दिन ना अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है, लेकिन आपको पता है स्ट्रांग वो नहीं होते जो कभी गलत नहीं करते, स्ट्रांग वो है जो दिल से सॉरी बोल सकते हैं। सो इसलिए आज एक चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर किसी से बात पेंडिंग है तो मे बी टूडे इज द राइट डे टू फिक्स इट। सॉरी बोलकर आज का दिन फिर से एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कीजिए, अपने रिलेशनशिप को फिर से हील कीजिए, एक और मौका दीजिए, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

जब कॉमेडी का नाम आए तो जेठालाल याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर का बर्थडे जिन्हें हम शायद बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जेठालाल की, यानी कि दिलीप जोशी का। सो आज हैप्पी वाला बर्थडे है दिलीप जोशी, जिन्होंने अपने ब्रिलियंट कॉमिक टाइमिंग और नेचुरल एक्टिंग से इंडियन टेलीविजन में एक आइकॉनिक प्लेस बना दिया है। और अगर इनके कैरेक्टर की बात करूँ ना, जेठालाल फ्रॉम द तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो, जो घर घर में फेवरेट बन चुका। सो भाई मैं उसे बहुत टाइम से देखते हुए आ रही हूँ और मेरा फेवरेट शो था वो। और अगर बात करें ना दिलीप जोशी की, तो आइए ये जानते हैं कि क्या इन्हें सबसे ज्यादा स्पेशल बनाता है। आउटस्टैंडिंग कॉमिक टाइमिंग रखते हैं दिलीप जोशी, रिलेटेबल एक्सप्रेशंस है, फैमिली एंटरटेनमेंट का परफेक्ट ब्लेंड है दिलीप जोशी। और इतना ही नहीं, इनकी एक्टिंग देखकर हर एज ग्रुप के लोग स्माइल कर देते हैं। सो आज फैंस इनकी कॉमेडी और मेमोरेबल डायलॉग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो चलिए विश करते हैं रेडियो महारानी विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे दिलीप जोशी जी। आप ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही एंडलेस लाफ्टर से अपने फैंस का दिल जीतते रहे और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: सुनो तो, कहाँ चली?
3: बाय।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आज हम बात करने वाले हैं एक रॉयल हेरिटेज, कलरफुल बाजार्स और टाइमलेस कल्चर की, क्योंकि जयपुर कल्चर का ग्लोबल सुपरस्टार बन गया और यही रीजन है कि जयपुर को दुनिया भर में स्पेशल माना जाता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिया की फेमस पिंक सिटी यानी कि जयपुर के बारे में। सो भाई, रिपोर्टेडली वर्ल्ड टॉप कल्चर सिटीज लिस्ट में प्लेस मिल गया है जयपुर को और ये रैंकिंग सिटीज के हेरिटेज, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स और कल्चर एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करती है। यानी कि अगर बात करें जयपुर की, तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या खास बनाता है जयपुर को। रॉयल पैलेसेस और फोर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको यहाँ, कलरफुल बाजार है जयपुर के अपने, ट्रेडिशनल फूड एंड कल्चर को प्रमोट करता है, साथ ही फेस्टिवल एंड फॉक वाइब्स हर जगह आपको जयपुर में देखने को मिलेगी, चाहे फिर बात हो हवा महल की या फिर आमेर फोर्ट की, हर जगह हिस्ट्री और ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। और अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर सिर्फ एक सिटी नहीं, एक रॉयल एक्सपीरियंस है, इसलिए ये अचीवमेंट इंडिया की रिच कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। तो हुआ ना जयपुर खास, और बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप आज तक जयपुर नहीं गए तो एक बार जरूर जाइएगा, जयपुर बहुत ही प्यारी सिटी है और गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को, यहाँ के बाजार भी अपनी रंगत में रंगे हुए हैं। तो जरूर जाइएगा एंड एंजॉय कीजिएगा रेडियो महारानी 89.6 FM को, साथ ही मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

क्या कभी आपने पेंगुइन्स की स्मार्ट सर्वाइवल स्टोरी सुनी है? नहीं सुनी ना, इसलिए मैं आज ये स्टोरी लेकर आई हूँ। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। अब सोचिए कभी बर्फीली जगह, सामने गहरा समुंदर और पानी के अंदर हिडन प्रीडिएटर्स। ऐसे में आपको पता है पेंगुइन्स क्या करते हैं? ऐसे में पेंगुइन्स का पूरा ग्रुप ओशन के एज पर खड़ा रहता है, लेकिन कोई भी पहले जंप नहीं करता उस ओशन में, क्योंकि कहीं ना पेंगुइन्स ये जानते हैं कि अंदर डेंजर हो सकता है, यानी कि डेंजरस लेपर्ड सील जैसे प्रीडिएटर्स छुपे हो सकते हैं। सो उनकी जान को खतरा है। लेकिन तभी यहाँ पर ना नेचर का एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये है कभी कभी ये पेंगुइन्स अपने ही एक फ्रेंड को हल्का सा पुश कर देते हैं ताकि पता चल सके कि पानी सेफ है या नहीं, यानी कि अपने एक फ्रेंड की कुर्बानी दे देता है। अगर वो पेंगुइन सेफली स्विम कर पाता है तो इसका मतलब अंदर कोई डेंजर नहीं है, और बाकी पूरा का पूरा ग्रुप उसके पीछे जंप कर देता है। लेकिन अगर पेंगुइन बाहर ही नहीं आया तो इसका मतलब डेंजर है। सो यहाँ पर ना एक बात तो कॉमन है, फ्रेंड्स ना हर जगह सेम होता है, फिर चाहे बात करो स्कूल की या फिर बात करो अंटार्कटिका की, हर जगह ना आपको इस तरह के दोस्त मिले जाएंगे। लेकिन आपको पता है ये स्टोरी हमारे लिए ना एक नेचर लेसन लेकर आती है। एनिमल्स भी टीम वर्क और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से डिसीजन लेते हैं। नेचर की दुनिया में हर टाइनी बिहेवियर के पीछे एक स्मार्ट रीजन होता है। सो अगर कभी भी आपको डिसीजन लेना तो टीम वर्क का ध्यान जरूर रखिए। और हाँ, एक और चीज, फ्रेंड्स हमेशा ऐसे बनाएं जो कभी आपको धोखा ना दे, सो दैट कि आप इस हार्श वर्ल्ड में अच्छे से सर्वाइव कर पाए और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख पाए। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: किया है?
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

जस्ट फॉर फन, या जस्ट फॉर फन के नाम पर ना हम कुछ भी कर देते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर ना मैं आज आपके लिए सोशल स्यापा लेकर इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये जस्ट फॉर फन ना सिर्फ कॉन्टेंट के लिए था। सो वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो मैं एक ऐसा इंसिडेंट लेकर आई हूँ जहाँ पर सुबह उठकर ना पुलिस को ये पता लगा कि एक स्कूल गोइंग टीनेजर बस लेकर 300 किलोमीटर दूर निकल गया। सो एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया जहां पर एक टीनेजर बॉय जस्ट फॉर फन के नाम पर एक बस चुरा कर ले गया और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि बस में कोई पैसेंजर भी नहीं था, लेकिन उन्हें जस्ट फॉर फन के लिए ये राइड करनी थी। और ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट एक बार हुआ, ये पिछले 6 महीनों में 3 बार हुआ था। और जब ऐसा करते हुए पकड़ा गया ना तो स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये था कि बस को ड्राइव करने वाला अंडर एज ड्राइवर जो बहुत टाइम से बस चला रहा था, लगभग 300 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव भी कर ली। पुलिस भी शॉक्ड थी कि रोड्स पर आखिर ये बस निकली कैसे। एंड थैंकफुली किसी को इंजरी नहीं हुई, लेकिन ये इंसिडेंट ने सेफ्टी कंसर्न जरूर रेज किए हैं। सो माय डियर लिसनर्स, बस यही कहना चाहते हैं कि मूवीज और वीडियो गेम्स अलग चीज है, रियल रोड्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। ड्राइविंग सिर्फ फन नहीं, एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वन मोर थिंग कि हम जब कंटेंट के पीछे कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, सो उसका रिजल्ट बहुत हार्मफुल हो सकता है। फ्रूटफुल कंटेंट क्रिएट कीजिए सो दैट कि आपकी ऑडियंस आपसे इंस्पायर हो, ना कि उनकी लाइफ इफेक्ट हो। इस तरह का कंटेंट बनाइए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
2: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो है।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सो गाना है ढिंडोरा बाजे रे, और इसी गाने के साथ ना बस मेरा भी टाइम हो गया यहाँ पर ढिंडोरा बजाने का, कि अब फाइनली मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज जाऊंगी तभी तो कल आऊंगा, लेकिन मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे रेडियो महारानी 89.6 FM पर, जहाँ पर मैं आती हूँ मंडे टू फ्राइडे 7 to 10 AM, जहाँ पर आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ आपके साथ, सोशल स्यापा से लेकर आपके शहर में ट्रैफिक एंड वेदर की क्या अपडेट है ये भी आपको बताती हूँ, और साथ ही क्या कुछ खास होने वाला है ये भी आपको बताती हूँ। सो भाई बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन आज नहीं कल मिलेंगे, कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तब तक अपना ख्याल रखेगा, अपनों का ख्याल रखेगा। दिस इज योर आरजे अंशिक साइनिंग ऑफ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
2: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
3: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी है।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में, जहाँ इस वक्त यानी 10:07 हो रहे हैं और 37 डिग्री सेल्सियस तापमान फरीदाबाद शहर का बना हुआ। बात की जाए क्योंकि कल से थोड़ा सा सुधरा नजर जरूर आए, जहाँ हम सब जानते हैं कल शाम थोड़ी सी हवाएं और कुछ बारिश भी हुई और बारिश ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठंडक जरूर कर दी है मौसम में, लेकिन तापमान अभी 37 ही बना हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले चार दिनों बाद यानी कि आने वाले 4th और 5th डे से 3-4 दिन तक बारिश हो सकती है, और ये बारिश होती है मौसम अच्छा बनता है तो कहीं ना कहीं सबको मौसम की इस गर्मी से, लू से, गर्म हवा से राहत मिलने का आसार है। इंतजार रहेगा बारिश का, हर कोई कह रहा है बरसो रे मेघा बरसो, और कल थोड़े से बरसे लेकिन प्रॉपर बरसने के लिए अभी कुछ दिन बाकी हैं। बाकी अजय भी चर्चाएं करता रहूंगा उस वाले का और खूबसूरत।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं यहाँ ट्रैफिक रूल्स के बारे में। जहाँ देखिए हम तो जानते हैं रेड लाइट्स पर कैमरास भी लगे हुए हैं कि अगर कोई भी कार वहाँ पे जंप करती है, रूल्स फॉलो नहीं करती तो घर पे चालान पहुँच जाए नंबर को स्कैन करके। लेकिन लोग नंबर छिपाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सड़कों पर लगे कैमरों को चकमा देने का चल रहा है खेल। जो चालक हैं वो चालान का एक तो कोई डर नहीं, कई लोग हैं ऐसे हैं जो अपनी नंबर प्लेट छुपा करके चल रहे हैं, तो कभी 0 को 8 तो 5 को 6 कुछ ना कुछ नंबर में गड़बड़ी करके या फिर थोड़ा कुछ पत्ता लगा करके या फिर थोड़ी सी मिट्टी लगा करके नंबर प्रॉपर स्कैन हो ही ना, ऐसा होता नज़र आ रहा है। जी हाँ, पुलिस कमिश्नर साहब बता रहे हैं 18-24 मई के बीच एक अभियान चलाया बिना नंबर प्लेट तथा बिना पैटर्न्स की नंबर प्लेट के वाहनों के 2300 चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि 18 मई को 469 और ऐसे कर करे लगभग 2300 चालान काटे गए, जहाँ पे कई होंगे नंबर प्लेट नहीं थी, नंबर प्लेट छुपा रखी थी या फिर वेरीफाइड नंबर्स नहीं थे। चालान का डर नहीं, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा सिर्फ चालान से बचने के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हमें खुद के लिए सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। और सड़क सुरक्षा में बात यही है कि ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो करेंगे तो खुद की भी सुरक्षा रहेगी और दूसरों की भी। बाकी ऐसी भी चर्चाएँ करता रहूँगा, उससे पहले एक और खूबसूरत

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना है।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गली। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं अब फरीदाबाद शहर के अरावली नेचर कैंप, जहाँ सुकून का नया ठिकाना बनने वाला। जी हाँ, जानिए नेचर कैंप में क्या क्या खास होगा। इको लॉज और स्विस कॉटेज, जी हाँ, जंगल के माहौल में जीवंत बनाने के लिए कैंप में अनुकूल लकड़ी की आकर्षक झोपड़ियों के ट्री हाउस, पेड़ों पर बने घर और आलीशान स्विस टेंट लगाए जाएंगे। फर्नीचर की बात की जाए तो कैंप के अंदर आधुनिक प्लास्टिक या लोहे के बजाय जूट और प्राकृतिक लकड़ी से बने बेहद आरामदायक फर्नीचर होंगे। साथ ही बर्ड वॉचिंग भी होने वाली है। वनस्पति की पहचान वॉच टावर, अरावली के घने जंगल और वहां विचरने वाले वन्य जीवों को सुरक्षित तरीके से ऊंचाई से देखने के लिए विशेष वॉच टावर बनाए जाएंगे। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आने वाले 21 एकड़ में पहले लेजर वैली पार्क को वन विभाग ने अपने अधीन लेकर नगर निगम के रूप में, नगर वन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसको थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन अरावली का नेचर कैंप सुकून का ठिकाना बनेगा जहां हर कोई ज्यादा पसंद करने वाला है। बाकी ऐसे भी चर्चा करता रहूंगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे आल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सिनेमा के गलियार से कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जहाँ पे कुछ बड़े धुरंधर एक साथ धमाल मचाते नजर आने वाले हैं। तो कुछ ऐसी कहानियाँ जहाँ पर नई जोड़ियाँ नजर आएंगी, कहीं होगा डायरेक्टोरियल डेब्यू तो कहीं होगा कुछ नए स्टार्स का, टीवी स्टार्स का ओटीटी और सिनेमा घरों में डेब्यू। अपना हाथ आजमाते नजर आने वाले कुछ स्टार्स कहीं है नए गानों की धमाल तो कहीं है टीजर ट्रेलर का अलग ही तूफान। सारी चर्चाएं करूंगा ओटीटी प्लेटफॉर्म से सिनेमाघर की, सिनेमाघर से हिंदी पट्टी से हॉलीवुड तक की चर्चाएं आप सबके लिए सिनेमा के पिटारे में लेकर के आया हूं। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले, यानी कि सिनेमा के गलियार में घुमाने से पहले, सुनाओ देना कुछ धमाकेदार से गाने ओली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके और ये खूबसूरत ट्रैक।

गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं कल की टू यानी कि कल की 2898 AD पार्ट टू के लिए दिसंबर 2027 रिलीज टारगेट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नाग अश्विन की टीम प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और साई बलवी के साथ शूटिंग अप्रैल 2027 तक रैप कर सकते हैं। फिल्म को ग्रैंड थिएटरिकल रिलीज के लिए दिसंबर 2027 विंडो में रखा जा रहा है, लेकिन अभी इसे रिपोर्टेड प्लान फाइनली ऑफिशियल नहीं किया गया। सभी स्टार्स मुख्य कास्ट में बने रहेंगे और सीक्वल पहले फिल्म की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाएगा। बात करें, कहा जा रहा है कि ये कहानी एक बढ़िया कहानियों में से एक होने वाली है, जहां पे दिसंबर 2027 विंडो काफी क्राउडेड भी होने वाली है, जिसमें अवेंजर्स, सीक्रेट वॉर्स और तुम्बा 2 जैसी बड़ी फिल्में हैं। फिर भी मेकर्स को तभी रिलीज करना चाह रहे हैं कि कहानी में कुछ तो ऐसा धमाल है कि इस कहानी को कोई भी नीचे नहीं धकेल पाएगा, ऐसा मेकर्स का मानना है। बाकी ऐसे भी चर्चा करता रहूंगा, उससे पहले कॉल ट्रैक।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: आगे गराज, गराज की ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहां हम बात करते हैं कुछ कहानियों के बारे में जहां बेहतरीन कहानियां कुछ बनाई गई लेकिन शायद कमाई के मुकाबले कुछ पीछे होती नजर आई। बात करें यहाँ पे दादी की शादी कृष्ण अवतारम पार्ट 1। राजा शिवाजी की कमाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल आंकड़े जो उनके सामने आते हैं 8.28 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाई की और नेट 5.67। ग्रॉस 7 करोड़ भी पास करती नहीं नजर आई। वहीं बात करें कृष्ण अवतारम पार्ट 1 की, हालांकि बहुत ही बेहतरीन कहानियों से कि बच्चों को बहुत अच्छा कुछ अपना हिस्ट्री सामने ला करके दिखाती हुई 12.1 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन और इंडियन ग्रॉस 14 करोड़। बात करें यहाँ पे फिल्म क्रॉसिंग 24 करोड़ नेट इन इंडिया, सो अब एग्जैक्ट कुछ फिगर आगे पीछे भी हो सकते हैं। मैं बात करें राजा शिवाजी, जहाँ पे लाइफ टाइम इंडियन कलेक्शन 18.98 करोड़ रुपीज़ रही और बात की जाए आखिरी सवाल की तो वो तो 3 करोड़ भी क्रॉस करती नजर नहीं आई है। हाइएस्ट अमंगस्ट दीज राजा शिवाजी और सबसे आखिरी मूवी आखिरी सवाल ही है। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक है ओनली ऑन रेडियो 101.3।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

0: में आजा कुड़ी।
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लैश। यहाँ दोस्तों अब हम बात ही करते हैं सिनेमा के गलियारों से आते हुए एक नई पारी के बारे में जो स्पोर्ट्स से होती नजर आ रही है। रोहित शर्मा जो कि बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स स्टार है, जहां पर नया टीवी ओटीटी शो टीज किया गया और एंटरटेनमेंट डेब्यू करने जा रहे हैं रोहित। टीजर में उनकी वायरल कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा लाइन को यूज किया गया और शो की अगर बात की जाए तो टीवी पर आने को है तैयार। बात करें यहाँ पे टीजर रिलीज किया गया लेकिन फॉर्मेट अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, ये टॉक शो रियलिटी या फन एंटरटेनमेंट फॉर्मेट हो सकता है। रोहित शर्मा के फैंस बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं उनके इस कहानी को देखने के लिए और अब देखते हैं कि रोहित शर्मा के कुछ क्रिएटिव अंदाज यानी कि नई पारी क्या धमाल मचाएगी। बाकी अजीब चर्चा होते रहेंगे उससे पहले एक और खूबसूरत है

0: dance of Basanti.
1: चल अर्जुन शुरू हो जा।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अर्ज अर्ज
2: अभी करते हैं, सुनो
1: इरशाद।
2: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
1: तुम अभी इसे लायक।
2: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
2: बस मेरी शायरी सुन लो।
1: फिर
2: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
2: अरे, बाय। हेलो।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों अब हम बात करते हैं डायरेक्टर डेविड के बारे में, जो कि द डेविल वियर्स प्राडा फिल्म। उनका कहना है कि ये कहानी कुछ अलग ही कहते नजर आई। ये कहानी कुछ ऐसा है जो हमने लगभग 20 सालों बाद किया है और शायद दोबारा कभी ना भी हो। तीसरा पार्ट कुछ ऐसा ही कहता नजर आएगा। कहा जा रहा है ये कहानी डेविड कुछ बेहतरीन तरीके से लिखते बनाते और शूट करते नजर आए। उनका कहना है कि यहाँ पे सीक्वल में केयरफुल कॉल बैक्स होने वाले हैं जहाँ ओरिजिनल लाइक के साथ सबके सामने होंगे। देखते हैं कि डेविड की कहानी यानी कि द डेविल वियर्स प्राडा क्या कुछ धमाल मचाते नजर आए। तीसरा पार्ट अब कहा तो जा रहा है, कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। तीसरा पार्ट क्या कुछ होगा ऑफिशियल कब अनाउंसमेंट, इसका फैंस कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार।
1: आंखों से आंखें

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनिए रे तू प्यार है इस खातिर तेरा तक करया प्यार कोन्या और सारी दुनिया में जाकी टोलिए तने जाट बरगा मिलेगा यार कोन्या और मैडम है दिन में सिपटा रात ने स्टूडियो में गावे मने तेरा जैसा देखा स्टार कोन्या तेरा जैसा
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फॉरवर्ड। यहाँ अब हम बात करते हैं दिशा पटानी के बारे में, जहाँ बॉलीवुड से हॉलीवुड डेब्यू करने को है तैयार। द पोर्टल ऑफ फोर्स ए सुपर नेचुरल एक्शन थ्रिलर कहानी, जहाँ पे जेसिका के किरदार में नजर आएंगे दिशा। बात करें फिल्म एक स्टेटिगार्ड्स वर्सेस हॉलीगार्ड सागा होने वाली है, जहाँ पे फीचर्स में केविन चार्ल्स और डॉल्फ भी नजर आएंगे। ट्रेलर दिखा रहे हैं कि उनका करेक्टर जहाँ पे डॉटर ऑफ रिवर लीडर्स बोथ साइड से होने वाला है, इनका किरदार एक उनके लिए बिग चांस हॉलीवुड में डेब्यू और सीधा इतने बड़े स्टार्स के साथ है। ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका, फिल्म को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लेटर 2026 एंड्स में रिलीज किया जाता है। दिशा के फैंस बहुत खुश हैं उनके इस डेब्यू को लेकर के। देखते हैं हॉलीवुड डेब्यू क्या धमाल मचाता नजर आएगा उनका। हालांकि बॉलीवुड में तो उनकी स्टार्टिंग बहुत धमाकेदार रही, क्या हॉलीवुड में भी स्टार्टिंग ऐसी ही रहेगी?

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूं, आवारा हूं।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर में फिल्मी टॉनिक आरजे मौलिक। यहाँ अब हम बात करते हैं जहाँ वक्त चला है सिनेमा के कैलेंडर का और आज डेट है 26 मई। बर्थडे है उस एक्टर का जिनका असली नाम शायद सबको याद ना हो लेकिन उनका कैरेक्टर नाम पूरा इंडिया जानता है। जी हाँ, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम हर कोई जानता है और शायद उनकी पहचान लगभग अपने उसी कैरेक्टर से। एक ऐसा इंसान जो हर रोज किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, कभी बिजनेस, कभी सोसाइटी, कभी फैमिली और फिर अपने एक्सप्रेशन से सबको हंसा देता है। और याद आते हैं उनके फायर ब्रिगेड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे स्टार की जो टीवी रियलिटी शोज से अच्छा खासा प्यार बटोरते नजर आ रहे हैं। वैसे शायद आप उनका नाम जान ही गए होंगे, अगर नहीं भी जाने कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बताऊंगा इस खूबसूरत से गाने के बाद। ओनली ऑन रेडियो महारानी।

शमूलियत, लैला मजनू शेरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद मुझे आया है कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से, जहाँ आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं दिलीप जोशी साहब, जिनकी अगर बात की जाए इनका सफर इतना आसान नहीं था। दिलीप जोशी ने एक्टिंग की शुरुआत बचपन से ही की और थिएटर को अपना बेस बनाया। उन्होंने गुजराती थिएटर में भी काफी काम किया और कॉलेज टाइम में एक्टिंग अवार्ड्स भी जीते। टीवी से पहले वो फिल्मों में भी नजर आए, मैंने प्यार किया, हम आपके कौन जैसी कहानियों में फनी कैरेक्टर्स के रूप में नजर आए, जहाँ स्मॉल कैरेक्टर से उन्होंने सबका दिल जीता। लेकिन सबसे उम्दा किरदार, सबसे याद रखने वाला किरदार है उनका तारक मेहता में जेठालाल का। जी हाँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा कैरेक्टर सिर्फ रोल नहीं, एक इमोशन बन गया। एक वक्त ऐसा भी था जब दिलीप जोशी लगभग एक साल तक इसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे थे और फिर TMKOC ने उनकी लाइफ बदल दी और फैंस के लिए आज भी उनकी एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स और टाइमिंग कॉमेडी का मास्टर क्लास मानी जाती है। जी हाँ, उन्हें दिलीप जोशी से ज़्यादा जेठालाल के नाम से पहचाना जाने लगा। बाकी ऐसी भी चर्चा करूँगा, उससे पहले कॉट

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: कुमुराया मारे गिल कुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े
1: कुमुराया मारे गिल कुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े

अरे अरे अरे अरे हर हा उड़ती चिड़िया तेरे सदके गिर मत जा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिनेमा के कलंदर में दिलीप जोशी साहब यानी कि जेठालाल गड़ा के बारे में, जहाँ अपने आज बर्थडे सेलिब्रेट करें। और बात कीजिए इनके बारे में तो देखिए कॉमेडी करना मुश्किल होता और सालों तक लोगों के हंसाते रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। आज सोशल मीडिया मीम्स हो, रील्स या फिर फैमिली टीवी, जेठालाल हर जनरेशन का पार्ट बन चुके हैं। फैंस आज भी उन्हें लेजेंड, एक्सप्रेशन किंग और चाइल्डहुड मेमोरी बोलकर सेलिब्रेट करते हैं। जेठालाल के किरदार को सल्यूट करता है हर कोई वो कॉमेडियन जो बिल्कुल उनसे सीखता नजर आता है। थिएटर आर्टिस्ट भी, टीवी भी और टीवी सीरियल पर तो ऐसा किरदार है कि क्या ही बताएं। एक बार फिर से हैप्पी वाला बर्थडे फ्रॉम द टीम ऑफ रेडियो महारानी। बाकी ऐसे भी चर्चा होती रहेंगी लेकिन आज नहीं, अब आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह करूंगा ढेरों बातें। तब तो सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंसी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: अरे बंसी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: और भैया क्या हाल चाल। हम अपने घर की फर्श चाहे जितनी अच्छी क्यों ना कर लें भैया, गाड़ी चलाना तो सड़कों पर ही है, सड़क पर तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, उसका क्या।
1: अरे उसके लिए तो नगर निगम है ना।
0: कहाँ है, सालों से यही सुनते आ रहे हैं। ऐसा लगता है सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों के बीच में थोड़ी सी सड़क है। किसी भी गली में जाओ, लोग दिखे ना दिखे, जगह जगह पर कचरे का ढेर जरूर दिख जाता है। और अगर रात के अंधेरे में कहीं बाहर निकल जाओ तो घर से टॉर्च लेकर जरूर जाना भैया, क्योंकि स्ट्रीट लैम्प तो ऐसे गायब हो गई हैं, जैसे दुनिया से डायनासोर। अब ऐसा नहीं चलेगा भैया, अब ब्यूटी पार्लर जाकर मेकअप होना हो, पर नगर निगम का मेकओवर होना बहुत जरूरी है।
2: तो आज से अपने अधिकारों का करेंगे सही इस्तेमाल, चुनेंगे वही जो होगा नगर के लिए सही।

0: भेजा सरकार
1: ने। थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

हर इंसान का जन्म एक कहानी के साथ होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी कहानी खुद लिखने का हौसला रखते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नरकोटा में जन्मी बचेंद्री पाल एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से आती थी। ना कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, ना कोई बड़ी फैसिलिटीज, और ना ही ये सोच कि मेरी बेटी हिस्ट्री बनाएगी। गांव में लड़कियों के लिए जिंदगी एक ही रोड मैप पर चलती थी, पढ़ाई थोड़ी सी, शादी, घर गृहस्थी। लेकिन बचेंद्री के लिए पहाड़ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थे, वो उनका सपना बन चुके थे। स्कूल जाते हुए जब वो हिमालय की बर्फ की ढकी हुई चोटियों को देखती थी तो उनके मन में एक अजीब सी फीलिंग होती थी, डर भी, रिस्पेक्ट भी, और एक साइलेंट चैलेंज भी, मैं तुम तक पहुंचूंगी। उस टाइम उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये सपना उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा, और फिर बनी इंडिया की पहली लेडी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और इसी के साथ साथ उन्होंने क्रिएट करी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री। कौन कौन सी उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए और क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, सब के बारे में करेंगे बात, मगर इस गाने के बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
2: ओ मेरी महबूबा,
1: अरे रास्ता रास्ता देखो आप, मेरी लड़ी है
2: महबूबा महबूबा.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

जब भी कोई इंसान नॉर्मल से अलग सोचता है तो उसे सबसे पहले गलत कहा जाता है। अगर कोई लड़की ऐसा सोच ले तो बवाल खड़ा हो जाता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और आज हम लोग बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट पर सबमिट करने वाली बचेंद्री पाल की। कॉलेज के टाइम पर बचेंद्री एक ट्रैकिंग प्रोग्राम में शामिल हुई थी। बस वही मोमेंट था जहां उन्होंने डिसाइड किया माउंटेनियरिंग इज नॉट अ हॉबी, ये मेरी कॉलिंग है। लेकिन जैसे ही ये बात घर और सोसाइटी तक पहुंची क्वेश्चंस शुरू हो गए। लड़की हो ये सब क्यों, पहाड़ों पर सिर्फ मर्द जाते हैं, क्या मिलेगा ये सब करके। तो ऐसे कुछ सवाल थे जो कि उनके सामने आके खड़े हुए। फिर उसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग, सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो और फ्यूचर बिल्कुल अनक्लियर। फिर भी बचेंद्री पाल ने पीछे ना हटने का फैसला किया। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया जहां उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं अपनी औकात प्रूव करनी थी, वो भी हर दिन। हैवी बैग्स, एक्सट्रीम कोल्ड, फिजिकल पेन, लेकिन सबसे मुश्किल था लोगों को गलत प्रूव करना। और वहीं से एक बात तो क्लियर हो गई थी, ये लड़की इतनी इजीली क्विट नहीं करेगी। और उन्होंने ये चीज साबित करके दिखाई। और आगे उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे उन्होंने मौत का सामना किया, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। फिलहाल आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां या तो आप टूट जाते हो या हिस्ट्री बन जाते हो। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं बचेंद्र पाल की। साल 1984, इंडियन एवरेस्ट एक्सपेडिशन, माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे ऊंचा चैलेंज। एक रात अचानक मैसिव एवलांच आया, कैंप्स तबाह हो गए, कई लोग बुरी तरह इंजर्ड हुए, कुछ अपनी जान तक खो बैठे। हर तरफ डर था, टीम का मोराल कंप्लीटली डाउन हो चुका था, डिसीजन ऑलमोस्ट फाइनल था, मिशन अबॉर्ट। लेकिन उस केओस के बीच में बचेंद्र पाल का मन एक ही बात कह रहा था, यहां तक आए हैं, अब नहीं रुक सकते। ठंड से उंगलियां सुन हो रही थी, ऑक्सीजन कम हो रही थी, हर स्टेप जिंदगी और मौत के बीच था। और फिर 23 मई 1984, बचेंद्र पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। उस पल सिर्फ एक चोटी कॉन्कर नहीं हुई थी, सोच, डर और स्टीरियोटाइप्स भी हार गए थे। और ऐसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट को यह दिखा दिया कि कोई भी चीज कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, उस पर भी फतेह हासिल की जा सकती है। और आगे उनकी लाइफ का सफर कैसा चला, करेंगे इसके बारे में बात। मगर फिलहाल आप सभी के लिए एक गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

सच्ची जीत वही होती है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी रास्ता बनाए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और हम बात कर रहे हैं आज बचेंद्री पाल की, इंडिया की पहली वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करी। एवरेस्ट के बाद बचेंद्री पाल एक नेशनल हीरो बन चुकी थी। अवार्ड्स मिले, रिस्पेक्ट मिली, पहचान मिली, लेकिन उन्होंने आराम करना चूज नहीं किया। उन्होंने सोचा अगर मैं कर सकती हूँ तो और लड़कियां क्यों नहीं। उन्होंने मल्टीपल ऑल वुमेन एक्सपेडिशंस लीड किए, 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स, इंडो नेपाल वुमेन एक्सपेडिशंस, गंगा रिवर राफ्टिंग जैसे डेंजरस मिशंस। उनका फोकस क्लियर था, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एडवेंचर, जबकि किसी ने सोचा तक नहीं था। वो सिर्फ माउंटेन्स नहीं चढ़ा रही थी, वो लड़कियों के अंदर एक उम्मीद जगा रही थी, उनके अंदर का डर तोड़ रही थी। आज बचेंद्री पाल टाटा ग्रुप के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान अब भी वही है, एक पाथ ब्रेकर की। और आगे कैसे उनका नाम एक पूरा लेजेंड बन गया, करेंगे इसके बारे में बात। मगर फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है, फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

हिस्ट्री सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स में नहीं होती, कुछ हिस्ट्री लोगों के दिमाग में लिखी जाती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली लेडी जिन्होंने एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी। उनका नाम है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का एवरेस्ट पर पहुंचना सिर्फ एक इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं था, वो एक सिग्नल था हर उस लड़की के लिए जिसे कहा गया था ये तुम्हारे बस का नहीं है। जब उन्होंने नेशनल फ्लैग एवरेस्ट की चोटी पर लगाया, उस वक्त सिर्फ हवा तेज नहीं थी, सालों पुरानी सोच भी हिल रही थी। वो लड़की जो एक गांव से निकली थी, आज दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़ी थी, और इस बात ने हजारों घरों में एक नया सवाल पैदा कर दिया था, अगर वो कर सकती है तो मेरी बेटी क्यों नहीं। एवरेस्ट के बाद बचेंद्री पाल ने स्पॉटलाइट को ईगो नहीं जिम्मेदारी समझा। उन्होंने अपनी पहचान को सीढ़ियां बनाया जिससे लोग और ऊपर चढ़ सके। वो स्कूल्स में गई, ट्रेनिंग कैंप्स और एक्सपेक्टेशंस के थ्रू लड़कियों को ये सिखाने लगी कि डर नॉर्मल है, गिरना अलाउड है, लेकिन रुक जाना ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ माउंटेनियर्स नहीं बनाए, उन्होंने डिसीजन मेकर्स बनाए, लड़कियां जो अपनी जिंदगी के चॉइसेस खुद लेती हैं। बचेंद्री पाल ने बार बार ये प्रूव किया कि लीडरशिप मसल से नहीं माइंडसेट से आती है। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो सिर्फ एवरेस्ट या मेडल्स या अवार्ड्स नहीं आते, याद आता है वो कॉन्फिडेंस जो उनकी कहानी सुन के लोगों के अंदर जागता है। वो एक लिविंग प्रूफ है कि सक्सेस का जेंडर नहीं होता, करेज को परमिशन की जरूरत नहीं होती, और बैकग्राउंड सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, डेस्टिनी नहीं। बचेंद्री पाल ने दुनिया को ये दिखाया है कि अगर आप अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते हो तो एक दिन लिमिट्स आपको पहचानने लगती हैं। हर पहाड़ बर्फ का नहीं होता, कुछ पहाड़ लोगों के सोच के होते हैं, और जो उन्हें पार कर लेता है वो सही में एवरेस्ट छूता है। तो मैं आज के शो को एंड करना चाहूंगा इस लाइन के साथ कि जो लोग अपने डर के ऊपर चढ़ जाते हैं वही दुनिया को ऊपर से देख पाते हैं। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलता हूँ यहाँ से। एंड आपको ये शो कैसा लगा ये भी बताइएगा। नंबर है 9654896896, और आगे आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी बताइएगा टेक्स्ट मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप पर। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ 9654896896। फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ से और मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, और सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। कान टूटे बंदे रवे मित्रा की।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: Sony, yeah.

0: Young Tasha Young, Shah Rukh, I'm at every party.
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

गाना है फ्रॉम द मूवी लव आजकल और इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। और आज फिर से एक और कहानी लेकर आई हूँ, एक बिजनेस टाइकून की कहानी जहाँ सक्सेस की चमक के पीछे छुपी होती है एक लंबी थका देने वाली कहानी। सोचिए, एक बच्चा सिर्फ 4 साल का जिसकी जिंदगी एक डिजीज की वजह से रुक जाती है, बोल देते हैं नीचे का हिस्सा जिंदगी भर काम नहीं करेगा। बचपन से ही बैसाखियों का सहारा, लोगों की सिंपैथी और सोसाइटी का एक फिक्स लेवल, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है सपने देखने की, हिम्मत करने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो कभी फोटोकॉपी मशीन के सामने बैठकर दिन गिन रहे थे और आज जिनका बिजनेस हजारों करोड़ के आसपास घूम चुका है। आज जब एक रिटेल ब्रांड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एड की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, मीम्स बन रहे हैं, तब शायद हमें ये भी पूछना चाहिए इस ब्रांड के पीछे का दर्द क्या था, इस सफलता के पीछे का गिरना कितना गहरा था। पर अभी मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ, गाने के बाद फिर से लौटूंगी और बताऊंगी इनकी कहानी आपको, जिनका नाम जानते ही आप तो कहने वाले हैं ओह ये इनकी कहानी है। तो वक्त है गाने का, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वेलकम अगेन टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपसे एक कहानी की बात की थी। एक बच्चा, एक डिसेबिलिटी और एक सपना जिसका एंड किसी को नहीं पता था। अब वक्त आ गया है उस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर से आपको मिलाने का। नाम है रामचंद्र अग्रवाल और शायद आप ये नाम पहले ना जानते हो, लेकिन जो ब्रांड इन्होंने बनाया उसे आपने जरूर देखा होगा। मोहल्ले के पास, बस स्टैंड के सामने या हाईवे के कॉर्नर पर विशाल मेगामार्ट। आज विशाल मेगामार्ट सिक्योरिटी गार्ड के एक जॉब एड की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग मीम्स बना रहे हैं, क्वालिफिकेशंस पर हंसी उड़ा रहे हैं, पर जब हम सिर्फ मीम देखते हैं हम कहानी भूल जाते हैं। रामचंद्र अग्रवाल की कहानी सिर्फ एक फाउंडर की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम के खिलाफ चलने वाले आदमी की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में ही बता दिया गया था तुम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, लेकिन उन्होंने नॉर्मल लाइफ का डेफिनेशन खुद लिखा। न सिंपैथी चाहिए, न शॉर्टकट्स, बस एक चीज, अपना काम। और वही सोच आगे जाकर विशाल मेगामार्ट जैसे मास रिटेल मॉडल की फाउंडेशन बनी। तो अभी हम इनके बचपन में डाइव करने वाले हैं, इनकी फैमिली के बारे में बातें करेंगे और मेंटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे जो इन्होंने स्कूल के दिनों में डेवलप की थी। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत हूँ। कभी कभी कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा सक्सेस वाला नहीं होता, वो होता है बचपन। रामचंद्र अग्रवाल जो कि विशाल मेगामार्ट के फाउंडर थे, रामचंद्र अग्रवाल का बचपन नॉर्मल नहीं था। 4 साल की उम्र में पोलियो ने इनकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, नीचे का हिस्सा काम नहीं करेगा। और इस एक सेंटेंस का मतलब था, ना दौड़, ना खेल, ना नॉर्मल स्कूल लाइफ। बैसाखियों के साथ चलना, लोगों की नजरों का बोझ उठाना और हर रोज खुद को समझाना, मैं कम नहीं हूँ। फैमिली सिंपल थी, मिडिल क्लास, ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन एक चीज थी, इज्जत। इनके पेरेंट्स ने कभी इन्हें ये फील नहीं होने दिया कि वो किसी से कम है। एक्सपेक्टेशंस क्लियर थी, पढ़ना है, समझना है और अपनी जगह खुद बनानी है। स्कूल के दिन इनके लिए मेंटल ट्रेनिंग जैसे थे। हर छोटी चीज मेहनत मांगती थी, बेंच तक पहुंचना, स्टेयर्स चढ़ना, असेंबली अटेंड करना। और इसी स्ट्रगल ने इनके अंदर एक चीज डेवलप की, पेशेंस। एडुकेशन पूरी की, डिग्री ली, फिर जॉब। पर ऑफिस के हर दिन के साथ इनके अंदर एक सवाल ग्रो होता गया, क्या मैं जिंदगी भर किसी और के अंडर काम कर पाऊंगा। और इस प्रॉब्लम के साथ जॉब मिलना बहुत मुश्किल था और जॉब छोड़ देना लोगों को बेवकूफी लगता था। पर रामचंद्र अग्रवाल को अंदर से पता था, मुझे अपना काम करना है। और फिर आया उनका पहला कदम, छोटा सा, रिस्की सा, और एक फोटोकॉपी मशीन के साथ शुरू हुआ ये सफर। और ये सफर क्या था ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इस गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

Once again, welcome back. You are listening to Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड में बात कर रही हूँ विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल की, जिन्होंने एक छोटे से फोटोकॉपी शॉप उधार के पैसे से ली, कोई गारंटी नहीं। रोज सुबह दुकान खोलना, मशीन का शोर और शाम को गिनती, कितना कमाया कितना बचाया। एक साल तक ये सिलसिला चला, पैसे आ रहे थे लेकिन दिल नहीं लग रहा था। रामचंद्र अग्रवाल को समझ आ गया था सिर्फ काम चलाना मेरा गोल नहीं है। फिर इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस ट्राई किया, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, मार्जिन सब समझना, लेकिन नतीजा लॉस। यहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं, कह देते हैं बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज सीख ली थी, फेलियर फीडबैक होता है। उसके बाद फैब्रिक बिजनेस, कपड़ों का काम, रिटेल की रियल अंडरस्टैंडिंग यहीं से आई, कस्टमर का बिहेवियर, प्राइस सेंसिटिविटी और स्टॉक मैनेजमेंट। 15 साल कलकत्ता में ग्राइंड, दिन रात का काम, और फिर भी अंदर एक आवाज थी, अगर इतना कर लिया है तो कुछ बड़ा क्यों ना करें। और फिर लिया गया एक सबसे डेयरिंग डिसीजन, सब छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना, एक नया शहर, जीरो सपोर्ट। और अभी उसी सपोर्ट के बारे में बात करूंगी, लेकिन गाना सुन लेते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जिंदगी में बस यही काम डाउन रहना बहुत जरूरी है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ विशाल मेगामार्ट के फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल की। दिल्ली में इन्होंने देखा मिडिल क्लास को ऑप्शंस चाहिए पर अफोर्डेबल, मॉल कल्चर एलीट के लिए था। इन्होंने सोचा व्हाई नॉट मास रिटेल। यहीं से विशाल मेगामार्ट का आइडिया निकला, स्टोर खुला, रिस्पॉन्स मिला और फिर एक के बाद एक स्टोर। टीम बनाना इजी नहीं था, लोग डाउट करते थे, पर रामचंद्र अग्रवाल का विजन क्लियर था। सिटीज जुड़ती गईं, स्टोर्स बनते गए, 414 सिटीज, 2007 आईपीओ, 2000 करोड़ वैल्यूएशन, मीडिया कवरेज, सक्सेस का नशा और यहीं से कहानी का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। फास्ट एक्सपेंशन, गलत फाइनेंशियल डिसीजन और फिर 2008 का मार्केट क्रैश, लोन का प्रेशर 750 करोड़, सिस्टम हिल गया, कंपनी गिरने लगी। 2011 में वो मोमेंट आया जब इन्होंने अपनी ही बनाई हुई कंपनी को 70 करोड़ में बेच दिया। सोचिए, ये बिजनेस लॉस नहीं था, ये आइडेंटिटी का लॉस था। यहीं पर ज्यादा कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन रामचंद्र अग्रवाल की नहीं। और कैसे इन्होंने कमबैक किया ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड, मैं गीत हूँ। और कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले जाकर खड़ा कर देती है जहाँ से सिर्फ दो रास्ते दिखते हैं, या तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर खुद को दोबारा डिफाइन किया जाए। रामचंद्र अग्रवाल के लिए विशाल मेगामार्ट को बचाना सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, वो एक इमोशनल सर्जरी थी। सोचिए, जिस ब्रांड को आपने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, अपनी पहचान से बनाया हो, उसे खुद अपने हाथों से छोड़ देना, 70 करोड़ में कंपनी बेचना। नंबर्स के हिसाब से लॉस था, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस था वो था आइडेंटिटी का। लोग जो कल तक आपको रिटेल किंग कह रहे थे, आज चुप थे। फोन कम बजने लगे, मीटिंग्स खत्म होने लगी। यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को खत्म मान लेते हैं। लेकिन रामचंद्र अग्रवाल ने खुद से एक सवाल पूछा, मेरे पास क्या नहीं बचा? जवाब आया, पैसे नहीं बचे, ब्रांड नहीं बचा, पर एक्सपीरियंस जिंदा है, और एक्सपीरियंस सबसे महंगा एसेट होता है। इन्होंने रियलाइज किया कि विशाल का डाउनफॉल का रीजन आइडिया नहीं था, एग्जीक्यूशन का ओवर कॉन्फिडेंस था। इस बार अप्रोच बदली, इस बार ग्रोथ स्लो रखी, इस बार नंबर से पहले डिसिप्लिन आया, और वहीं से शुरू हुआ V2 रिटेल। नया नाम, नया स्ट्रक्चर, पर वही कोर अंडरस्टैंडिंग, इंडियन मिडिल क्लास। नो फ्लैशी ड्रीम्स, सिर्फ सस्टेनेबल बिजनेस, स्टोर बाय स्टोर, सिटी बाय सिटी, कंट्रोल ग्रोथ। आज V2 रिटेल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और आज उसकी मार्केट वैल्यू 6,500 करोड़ से ज्यादा। पर इस कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट ये नंबर नहीं है, पावरफुल पार्ट ये है कि एक आदमी जो बचपन से बैसाखियों के साथ चला, जो जिंदगी भर लोगों के डाउट्स उठाता रहा, जो एक बार सब कुछ खो चुका था, उसने फिर से खुद को खड़ा किया। और यहीं से नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन निकलता है, फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हो वो आपको डिफाइन करता है। अगर आप अपना स्टार्टअप ब्रांड करने के बारे में सोच रहे हो, और अगर आप लोन, प्रेशर, सेल्फ डाउट से घिरे हो, तो रामचंद्र अग्रवाल की कहानी आपको एक बात याद दिलाती है, एंड तब होता है जब आप खुद मान लेते हो। डिसेबिलिटी एक्सक्यूज नहीं होती, बैकग्राउंड लिमिटेशन नहीं होती, और एज कभी बैरियर नहीं होती। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं होता, बिजनेस पेशेंस, सेल्फ बिलीव और लॉन्ग विजन का टेस्ट होता है। आज विशाल मेगामार्ट का नाम शायद नए लोग चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की सोच अभी भी जिंदा है। और V2 रिटेल सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट है, मैं गिरा था पर खत्म नहीं हुआ था। और इसी थॉट के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं हूँ गीत, और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड, और जहाँ कहानियाँ सिर्फ सक्सेस की नहीं होती, दोबारा खड़े होने की होती है। याद रखिए, अगर आप जिंदा हैं तो आपका बिजनेस ड्रीम भी जिंदा है। और मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी सोचा है एक छोटा सा दिया पूरे महल को रोशन कैसे कर सकता है? ना एलईडी लाइट्स, ना शैंडलियर, ना इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन फिर भी एक वक्त था जब राजा महाराजाओं के महल रात में सितारों की तरह चमक उठते थे, और उस जादू का नाम था शीश महल। वो कहा है कि रोशनी जब शीशों से टकराती है तो अंधेरा भी खूबसूरत लगने लगता है। इसी के साथ रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ, और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम चल रहे हैं शीश महल की तरफ, जहाँ दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं रोशनी

शीश मतलब मिरर, और ये वो जगह थी जहाँ हजारों छोटे छोटे मिरर्स दीवारों और सीलिंग्स पर लगाए जाते थे। राजस्थान के फोर्ट्स और पैलेस, शीश महल रॉयल्टी की शान माना जाता था, और सबसे फेमस शीश महल अंबेर फोर्ट में बना हुआ है। जब इस महल में दिया जला था तो उसकी रोशनी हर मिरर से टकराकर पूरे महल को स्टार्स की तरह चमका देती थी, मानो जैसे एक रोशनी और हजार रिफ्लेक्शंस। शायद इसी को रॉयल मैजिक कहते हैं। और शीश महल में सिर्फ रॉयल मैजिक ही नहीं, आर्किटेक्चर का भी मैजिक नजर आया, जिसके बारे में करेंगे बातें वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
5: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
4: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो
0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी है।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजेंशी आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज कल्चर कारवा की कहानी लेकर आई है आपको शीश महल। जब बात हो ही रही है इस महल की तो आइए जानते हैं आर्किटेक्चर का मैजिक। अब सोचिए जरा, उस जमाने में ना मॉडर्न मशीन्स थी ना लेजर कटिंग, फिर भी आर्टिसंस ने इतना डिटेल मिरर वर्क कैसे किया होगा। टाइनी बेल्जियंस ग्लास मिरर्स, इंट्रिकेट फ्लोरल पैटर्न्स और हैंडक्राफ्टेड क्रेविंग्स, हर इंच पर पेशेंस था, हर डिजाइन में आर्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मिरर्स को इस तरह लगाया गया था कि एक स्मॉल फ्लेम भी पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर दे। वो कहा है कि जो लोग पत्थरों में जान भर देते हैं वही असल में वक्त को हरा देते हैं। और इतना ही नहीं, ये महल अपने अंदर बहुत सी कहानियां छुपाए बैठा है, जिन कहानियों के बारे में बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर, आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं शीश महल के बारे में। तो आइए जानते हैं रानियों की सर्दियों का महल क्यों कहा जाता है शीश महल। कहते हैं शीश महल सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं बना था। राजस्थान की ठंडी रातों में रानियां यहाँ बैठती थी और एक दिया जलाती थी। मिरर्स की रिफ्लेक्शन से पूरा महल गर्म और ग्लोइंग हो जाता था, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। वो कहा है कि कभी कभी आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता, फीलिंग्स को डिजाइन करने का आर्ट होता है। बात तो सही है, क्योंकि एक दिया और हजार सितारे, तो जैसा ही चमकता है शीश महल। सबसे फेमस बात जो लोग आज भी याद रखते हैं, शीश महल में एक दिया जलता था और पूरा महल सितारों की तरह चमक उठता था। इमेजिन कीजिए वो सीन, अंधेरी रात, रॉयल साइलेंस और एक टाइनी फ्लेम, और फिर दीवारों पर चमकते रिफ्लेक्शंस, जैसे आसमान ने अपने सारे सितारे महल के अंदर भेज दिए हों। वो कहा है कि हर रोशनी को सूरज बनना जरूरी नहीं होता, कभी एक दिया भी पूरी दुनिया बदल देता है। और शायद इसीलिए सिनेमा और शीश महल का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में जानेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी है।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देखकर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाए। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
4: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
5: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी है।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि, जहां आज कल्चर कारवा की कहानी आपको ले आई है शीश महल। तो आइए चलिए जानते हैं सिनेमा और शीश महल का कनेक्शन। शीश महल का चार्म इतना सिनेमैटिक है कि बॉलीवुड भी इसे इग्नोर नहीं कर पाया। पुरानी रॉयल फिल्म्स में मिरर पैलेसेस का इंस्पिरेशन इसी आर्किटेक्चर से आता रहा है। और ऑनेस्टली, कैमरा हो या आंखें, शीश महल हर फ्रेम में मैजिकल ही लगता है। अगर बात की जाए कि क्या इस शीश महल को बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है, तो वो है क्राफ्ट्समैनशिप, जो आज रेयर देखने को मिलती है। आज के टाइम में ऐसे हैंडमेड मिरर्स वर्क बहुत रेयर हो गए हैं, क्योंकि पहले आर्टिसन सिर्फ काम नहीं करते थे, अपनी रूह उसमें डालते थे। एक पैटर्न कंप्लीट करने में महीनों लग जाते थे, पर जब बनता था तो सदियों तक लोग देखते रह जाते थे। और ये महल सिर्फ कहानियां नहीं दिखाता, ये महल हमें बहुत कुछ सिखाता है। शीश महल हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाता है कि रोशनी तब और खूबसूरत लगती है जब वो बांटी जाए। एक दिया अकेला छोटा लग सकता है, पर रिफ्लेक्शंस उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, बिल्कुल इंसान की अच्छाई की तरह। शीश महल सिर्फ शीशों का पैलेस नहीं है, ये इमेजिनेशन का पैलेस है। एक ऐसी जगह जहां आर्किटेक्चर और पोएट्री एक साथ जिंदा हो जाती है। वो कहा है कि शीशे टूट भी जाएं तो उनकी चमक याद रहती है। कुछ जगहें बिल्कुल वैसे ही होती हैं जो वक्त के बाद भी दिल को रोशन कर देती हैं। अगर आप भी कभी जयपुर जाएं तो शीश महल में एक बार खामोशी से खड़े रहना, हो सकता है आपको अपनी ही रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा सुकून मिल जाए। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक और जगह, एक और कहानी और एक और नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: इस चिलचिलाती हुई गर्मी में बस कोई इंसान आ जाए और बस मुझसे ये पूछ ले, चाय पियोगे? आपको भी ऐसा लगेगा ना कि भाई क्या बात कर रहा है तू, मगर चाय जब कोई पूछ लेता है मना नहीं किया जाता। अगर मैं मना भी करूं तो आप बोल देना कि ज्यादा बन गई है, पी के जाओ। स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। ये गर्मी क्या करके मानेगी, आई डोंट नो। अभी तो नौबतपा शुरू हुआ है, कल शाम की बारिश हुई थी, करेंगे सब चीज़ों के बारे में बात। बस बताने आया था कि मैं आ गया हूँ और गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, और गाने को एंजॉय करना आप लोग, मैं भी एंजॉय करूँगा। बस मैं यूँ गया यूँ आया, रोज़ बोलता हूँ बस मैं आ रहा हूँ एक मिनट में, बस आपको बताने आया था।

भाई मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी तो ऐसे ही चलेगी, आप लोग चाय पीते रहना। एक्चुअली में क्या होता है, चाय के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपको इस गर्मी में लड़ने में हेल्प करते हैं। स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और अब अगले 3 घंटों के लिए आप सभी के पास आ चुका हूँ, दिल्ली से लेके फरीदाबाद बिल्कुल सारी बातें करेंगे और पूरे ऑल ओवर इंडिया जितनी भी अपडेट्स है सब लेकर आऊँगा आप सभी के पास। आपको पता है एक आदमी ने अपनी 300 करोड़ वाली कंपनी को छोड़ दिया, मतलब जॉब करता था वो वहाँ पे और उसने छोड़ दिया। वहीं पर एक इंजीनियर ने जॉब अप्लाई करी, 35,000 रुपये उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि 35,000 रुपये की मुझे सैलरी मिल जाएगी, बट उस आदमी को 50,000 रुपये की सैलरी पर रख लिया गया। क्यों हुआ ऐसा वो मैं आप सभी को बताऊंगा। एंड हम सबके घर में खाने का तेल आता है ना, जो हम लोग खाने में तेल इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा 1 लीटर की आप जब बॉटल लेकर आते हो तो उसमें 910 ml या फिर 850 ml तेल होता है, पूरा 1 लीटर आपको नहीं मिलता। तो करेंगे इसके बारे में बात कि अब कब से आपको ये मिलने वाला है। तो ये तो होगी जी मेरी बातें, इसके अलावा गर्मी के बारे में बातें कर लेंगे। और अगर इसके अलावा आप लोगों को मुझसे कोई भी बातें करनी अगले 3 घंटों के दौरान, तो आप लोग एक नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है जी 9654896896। सिंपल सा नंबर है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना, बादशाह बाजी की आवाज में उनके साथ एक और लेडी है, सुनिए इस गाने को, एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

बारिश आ गई थी कल रात को, आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया? वैसे बता दूं आपको, पूरे फरीदाबाद में हर जगह तो ये बारिश नहीं आई है, दिल्ली एनसीआर में भी हर जगह ये बारिश नहीं आई थी, बट कल रात को अचानक से 9:20 के आसपास ये बारिश होनी शुरू हुई थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जो मैं ये बारिश की बात कर रहा हूं, तो मौसम विभाग ने ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया था कि बारिश होगी, एंड कल अचानक से रात को बारिश होनी शुरू होती है। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट की वो बारिश हुई थी, एंड इट वॉज रियली अमेजिंग। बारिश हुई और फिर उसके बाद नो डाउट थोड़ी सी उमस थी थोड़ी देर तक, बट फिर उसके बाद हवा चलनी शुरू हो गई थी। तो ऑल टोटल बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये गर्मी है ये यूं ही बरकरार रहेगी कल और परसों तक, फिर उसके बाद आप लोगों को फ्राइडे और सैटरडे को बारिश देखने को मिल सकती है। फ्राइडे की अगर मैं बात करूँ तो फ्राइडे को दोपहर से बारिश होनी शुरू हो सकती है, और अगर सैटरडे की बात करूँ तो सैटरडे को भी आपको दोपहर में बारिश देखने को मिल जाएगी। 3 से ये बारिश हो सकती है स्टार्ट, और बस मैं वेट कर रहा हूँ इस वीकेंड का, क्योंकि इस वीकेंड अगर बारिश हो जाएगी तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा ना। तो चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए और भी ढेरों सारी बातें लेकर आऊँगा। और हाँ, तेल सस्ता हो गया, बता आपको नहीं कौन सा तेल सस्ता हुआ, कैसा सस्ता हुआ है वो बताऊंगा आप सभी को, मगर इस गाने के बाद।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रह।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

तेल सस्ता हो गया है। कौन सा तेल, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ खाने वाले तेल की। सस्ता ऐसा हुआ है क्योंकि पहले जो एक लीटर की पैकेजिंग आती थी उसमें पैसे तो पूरे एक लीटर के लिए जाते थे, मगर आपको पकड़ाया जाता था 900 ml या फिर 850 ml। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, आदित्य रिखाड़ी की आवाज़ में रहेगा ना हमदम। और अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो यही है कि खाने के तेल के जो पैकेट्स थे उस पर सरकार ने सख्ती बरत दी अब और बोल दिया है कि अब नहीं चलेगा ये खेल जिसमें आप लोग एक लीटर की बजाय 850 या फिर 900 ml डाल के देते हो। एक्चुअली मैं पैकेजिंग को लेकर नया नियम लाया है और लाने की तैयारी पूरी तरह से अभी, वैसे 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर जैसे जो स्टैंडर्ड साइज़ है ना उसमें ही तेल बेच सकेगी कंपनियां। और अब ऐसा नहीं होगा जैसे पहले श्रिंकफ्लेशन होता था। एक्चुअली श्रिंकफ्लेशन होता ये है कि एक लीटर की बोतल दिखाई जाती है आप लोगों को। आप आज भी टेस्ट कर लेना, आपके घर के पास जो दुकान है आप उधर से 1 लीटर की बोतल लेकर आना तेल की, तो उसमें आप जब चेक करोगे तो उसमें 950 ml या फिर 900 ml या फिर हो सकता है 850 ml तेल ही होगा। तो इस पर रोक लगाने के लिए अब थोड़ा सा सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू करी है। और एक्चुअली में कंपनियां तेल की मात्रा कम कर देती थी जो कि अब नहीं कर पाएगी, तो मुझे लगता है एक अच्छा नियम लाया जा रहा है। बट इसके अलावा और भी तेल हैं जो महंगे हो रखे हैं, करेंगे उसके बारे में बात। और इंडिया में कहां पर सबसे सस्ता और कहां पर सबसे महंगा तेल मिल रहा है इसके बारे में भी करेंगे बात, मगर

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आयशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो
3: ladies and gentlemen, you are not ready for-

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

दिल किसी से भी लग सकता है, लोगों का दिल अपनी गाड़ी से अपनी बाइक से भी लग जाता है, मगर आज की डेट में क्या करें, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट टेंशन। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी मैं तेल की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ऑयल के प्राइसेस हम सबको पता है बढ़ रहे हैं। एंड अभी अगर मैं बात करूं ऑयल प्राइसेस की और भी बात, तो बता दूं इंडिया में कुछ ऐसी जगह जहां पर अभी भी सस्ता मिल रहा है पेट्रोल, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 88 रुपीज़ पर लीटर। आपने कितने में खरीदा, 100, 102, 101? हाँ, इतना ही चल रहा है हरियाणा का अभी प्राइस। और बता दूँ आपको, अंडमान एंड निकोबार में 88.66 रुपीज़ लीटर चल रहा है पेट्रोल, और डीजल है वहाँ पर 84.56। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो ये आइलैंड है ना, हमें भी यहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर तो सस्ता है। और अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में डीजल थोड़ा सा सस्ता है, 89.47 चल रहा है, जो कि हरियाणा से तो बहुत सस्ता है। तो चलो हम लोग बस प्रे करेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो जल्दी से खत्म हो जाए और हम लोगों को पेट्रोल एंड डीजल थोड़े से सस्ते रेट में मिलना शुरू हो जाए, नहीं तो इलेक्ट्रिक पे स्विच करना पड़ जाएगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, एक घंटा कब बीत जाता पता नहीं चलता ना, अब बीतने वाला बस एक घंटा। तो चलिए अभी एक गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: 89.6 FM
1: छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
2: ना

अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग अभी अपनी जॉब छोड़ दो, तो आप लोगों के मन में 10 चीज़ें आ जाएगी कि जॉब छोड़ेंगे तो करेंगे क्या, फिर उसके बाद हम लोगों की लाइफ कैसे चलेगी, कैसे सब कुछ वापस पटरी पर आएगा, है कि नहीं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आई नो ये सारे के सारे सवाल सब

वो भी फरीदाबाद से गुड़गांव ट्रैवल करते हैं कि क्या आप खुश हो, ये सवाल आप लोग अपने आप से पूछिए। मैं सिर्फ फरीदाबाद से गुड़गांव जाने वालों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे बात करना चाहता हूँ जो भी लोग ऑफिस जा रहे हैं। अगर आप जो जॉब कर रहे हैं, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं, या फिर मैं बोलूँ कि क्या आप उसमें खुश हैं, बताइएगा जरूर। नंबर है जी 9654896896। वापस अगर हम लोग बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसने 300 करोड़ की कंपनी की जॉब छोड़ दी, क्यों छोड़ी वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आप सभी के लिए किंग की आवाज में ये

रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक

0: प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6।

जॉब छोड़ने की बात कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले, और मैं बस इतना से पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या आप लोग अगर एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करें जिसका टर्नओवर 300 करोड़ रुपए है, तो क्या आप उसकी जॉब छोड़ दोगे? नहीं ना, कोई नहीं छोड़ सकता। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मगर आज मैं जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूं, इस इंसान ने जॉब छोड़ दी, 300 करोड़ रुपए वाली कंपनी छोड़ दी इस इंसान ने, और ये वाइस प्रेसिडेंट वाली पोस्ट पे थे। एक वीडियो आई थी मेरे सामने आज इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा पूरी देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने टाइटल लिखा पड़ा था बड़ा बड़ा कि 300 करोड़ की जॉब मैंने क्यों छोड़ी। तो एक्चुअली में 300 करोड़ की जॉब नहीं थी, 300 करोड़ की कंपनी थी, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के पद पर ये तैनात थे, तैनात ही बोलूँगा, इनकी रेजिग्नेशन थी वाइस प्रेसिडेंट, और 40 साल इनकी एज है, और इन्होंने अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लिया, और इसीलिए इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी छोड़ दी। और फिर उसके बाद हुआ क्या, वही कि लोग क्या कहेंगे, और फिर इनकी मम्मी ने ही इनसे 3 दिन तक बात नहीं करी, बीवी ने भी बोला कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। बट इस एंटरप्रेन्योर का कहना है कि देखो, नौकरी के टाइम में ना इनको ये लग रहा था कि वो ना किसी दूसरे का ब्रांड बना रहे हैं, ना कि अपना खुद का ब्रांड बना रहे हैं। तो जब ये सब चीज़ें इन्हें आती ही थी, तो इन्होंने खुद से अपना एक नया ब्रांड बनाना शुरू कर दिया है, और अभी बोला है इन्होंने कि देखो मैं तो इस पर निकल पड़ा हूँ, आप लोगों के मन में भी कोई अगर आइडिया है तो उस पर काम करना आज से ही शुरू कर दीजिए। जलिए, अब अगर आप लोगों ने कोई आइडिया सोच रखा है तो उस पर काम करना जल्दी से शुरू कर दीजिए, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। वापस अगर बात करते हैं उस लड़के के बारे में जो नौकरी तो मांगने गया था 35,000 वाली, मगर मिल गई उसको 50,000 वाली नौकरी, कैसे, कहाँ, कब, सब कुछ बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

ਕੋਟ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

इमेजिन करो कि आप लोग जॉब मांगने गए हो और आपके मन में एक सैलरी स्ट्रक्चर है कि हाँ इतने में मैं सेटल कर लूंगा, इतने में मैं ज्वाइन कर लूंगा, और आप गए नौकरी मांगने के लिए, आपने बोला कि मुझे आप 35,000 रुपए सैलरी दे दीजिए, मगर सामने से आपको जवाब मिलता है कि 35,000 नहीं दे सकते हम आपको, हम आपको देंगे पूरे 50,000 रुपए। तो आप लोगों का रिएक्शन कुछ तो अलग ही होगा ना। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एक इंजीनियर गया था नौकरी मांगने के लिए, मगर फाउंडर्स ने उसको 35,000 की जगह 50,000 रुपए की नौकरी ऑफर कर दी। और ये है IITians और इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है और उन्होंने इंजीनियर को इतना पैसा दिया। अब उनका ये कहना है कि देखो हमारा बजट 50,000 रुपए का था और उस काम की यही वैल्यू थी, 50,000 रुपए वाला बंदा ही काम करेगा। और इन्होंने सिंपल सी बात बोली कि देखो अगर ये 3 साल से कंपनी में काम, 3 साल तक ये इंसान कंपनी में काम कर ले तो बहुत अच्छा है, और अगर वो बीच में छोड़ देता है तो हमें दूसरे को हायर करने में इससे भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता, इसीलिए हमने उसको 35 की जगह 50,000 रुपये ऑफर कर दिए। और मेरे ख्याल से 35,000 रुपये अगर वो ज्वाइन करता और फिर वो स्विच मारने की सोचता तो उसको 40 से 45,000 रुपये मिलते, बट अभी उसको 50,000 रुपये मिल चुके हैं। तो हो सकता है कि लॉयल्टी के टर्म्स में या फिर लॉयल रहने के लिए वो इस कंपनी में ही रहे, बट काफ़ी बार होता है ना कि इंसान को अगर सैलरी अच्छी मिल जाती है फिर उसके बाद वो सोचता है कि चलो आगे स्विच करके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। और वैसा एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसा हमारी कंपनी क्यों नहीं करती कभी, मतलब आप लोगों को भी ऐसा मिलना चाहिए कि आप लोग 20,000 रुपये का हाइक मांगो आपको 40,000 रुपये का हाइक मिल जाए। जस्ट किडिंग, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए ये गाना 89.6 पर। और कुछ

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: फिल्में देखने का तो आप लोगों को भी शौक होगा बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है। और ये जो फिल्म का गाना बज रहा है जोगी, मगर ये जोगी रीमिक्स वर्जन है धुरंधर वन मूवी का। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ। मैं किसी मूवी को तब तक नहीं देखता जब तक लोग मुझे बोलते रहेंगे, जब मेरा मन करेगा तभी देखता हूँ मैं। खैर अभी मैं एक बात करना चाहता हूँ, और एक ऐसी बात करना चाहता हूँ कि किसी ने सोचा नहीं था कि 8 करोड़ रुपए की मूवी बनी होगी और 800 करोड़ कमा जाएगी। अब मैं कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ, इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन। और मैं भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ हॉरर फिल्म से, बगैर डर बहुत लगता है मुझे बाद में, बट स्टिल ऑब्सेशन नाम की मूवी है, 8 करोड़ रुपए में बनी और सिर्फ 10 दिन में इसने 800 करोड़ कमा लिए। यूट्यूब क्रिएटर करी बारकर की ये फिल्म है, मतलब यूट्यूब से इन्होंने फिल्म बनानी शुरू की, और अभी इन्होंने सिर्फ दूसरे वीकेंड में ही बहुत ज़्यादा कमाई कर ली, 800 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और ये फिल्म, मतलब ऐसा क्या होता है इंडिया में, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी फिल्म आती है तो वो करीब करीब 2 से 3 हफ्ते थिएटर्स पे रहती है, मगर अमेरिका में काफ़ी बार ऐसा होता है कि पहले हफ्ते के बाद ही काफ़ी सारी मूवीज़ थिएटर से उतर जाती है। बट ये मूवी अभी तक नहीं उतरी है और जल्द ही ये OTT पे भी आ जाएगी। ऑब्सेशन है इस फिल्म का नाम, और मुझे लगता है कि इंडिया में भी जल्दी रिलीज़ होनी चाहिए। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है इस फिल्म में जो 800 करोड़ कमा गई है। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। वापस आकर मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ ना, जिसको सुन के आप भी बोलोगे ऐसा भी होता है क्या, क्या है वो बातें बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।
1: करनौजला इन द चाल प्रूफ

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: सिद्धू मूसेवाला की आवाज में था ये गाना, और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। आज मैं इंटरनेट में स्क्रॉल कर रहा था, जो कि हम लोग रोज करते हैं, हर इंसान करता है, तो मेरे सामने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फीड आई, और मतलब पोस्ट आया मेरी फीड पे, और वो पोस्ट था दो लॉज के बारे में। पहला था मर्फीज लॉ, दूसरा था किडलिंस लॉ। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा मर्फीज लॉ के बारे में, जो कि अक्सर हम लोगों के साथ होता ही होता है कि जब हम लोग चाहते हैं कि कुछ ना हो तो उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो स्कूल टाइम को याद कर लो कि स्कूल के टाइम पर हम लोग जब जाते थे स्कूल से वापस घर पर, तो अपने फेवरेट दोस्त के साथ, मतलब वाले के साथ या वाले के साथ जब हम जाते थे, हम लोग मन में यही सोचते थे कि काश कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, मगर फिर उस चीज़ के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते थे। ऑल्दो ये सिमिलर है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, बट स्टिल मर्फीज लॉ ये कहता है कि जो भी आप चीज़ नहीं चाहते हो वो चीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कभी भी ऐसा मत बोलो कि ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो। आप हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिवली बोलो कि मेरे साथ ये हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों की लॉटरी लग जाए, तो लॉटरी लग जाए तो हम तो ये बोलेंगे ना लॉटरी लग जाए, नहीं नहीं आपको ऐसा है, आप अगर चाहते हो कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो तो आप हमेशा ये बोलो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह से आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने लगेगा। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के साथ मैं एक और लॉ के बारे में बात करूंगा, और वो है किडलिंस लॉ। वो लॉ क्या कहता है बताऊंगा आपके वो सभी को, मगर थोड़ी देर बाद इस गाने के बाद। बहुत बढ़िया गाना है, मिक्स मैशअप सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: Young money,

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

ये गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इस गाने पर पता नहीं क्यों वो बीट्स बड़ी अमेजिंग लगती है, क्योंकि वो है ही अमेजिंग। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप सभी को, जो भी लोग मुझसे नए जुड़े हैं, मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले मर्फीज लॉ की, जिसमें ऐसा होता है कि आप लोग जो चीज़ नहीं चाहते वो चीज़ होगी ही होगी, मतलब उसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है किडलिंस लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप लिख लो, आधी तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। और अक्सर ये चीज़ रियल में होती है। हम सबने ये चीज़ नोटिस करी है कि हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है अगर हम वो किसी को बता दें तो भी ऐसा लगता है कि हाँ एक बोझ हल्का हो गया है। बट इस प्रॉब्लम को आप कभी भी लिख कर देखो। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे, जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो हम लोग जब पढ़ते थे, पढ़ने बैठते थे, हम लोगों को कुछ चीज़ अगर मुश्किल लगती थी तो उसको जब हम लोग लिखते थे तो आधी चीज़ तो वैसे ही सॉल्व हो जाती थी, मतलब आधी प्रॉब्लम हमें लगता था कि अब तो ख़त्म हो चुकी है ये प्रॉब्लम। तो किडलिंस लॉ यही कहता है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको हमेशा लिख लेंगे ताकि वो आधी वहीं सॉल्व हो जाए, और ये ट्राई करना कभी हो भी जाएगी। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गाना चला रहा हूँ 89.6 रेडियो महारानी पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

आज के मैच में जो भी होगा, जो भी जीतेगा वो जाएगा सबसे ऊपर। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। बैंगलोर वर्सेस गुजरात है आज मैच, और मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, देखो आज जो भी जीते बट विराट कोहली और ट्रैविस हेड के बीच में जो ये पंगा हुआ था उस दिन, उसका कुछ समझ नहीं आया मुझे। लाइक क्यों हुआ था वो पंगा? और फिर उसके बाद क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, ऑल्दो मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ बट हाथ मिलाना चाहिए था, ये मुझे ऐसा लगता है। खैर अब जो भी हुआ वो हुआ, और अब आज जो मैच है, आज जो भी जीतेगा वो टेबल में सबसे ऊपर आ जाएगा। और फिर उनका मैच होगा किसके साथ, बस आने वाले वो तो वक्त में पता चल ही जाएगा। जैसे कि कल मैच है हैदराबाद वर्सेस राजस्थान, और अगर हैदराबाद जीतती है तो हैदराबाद को फिर आज हारने वाले से मुकाबला करना पड़ेगा, और फिर उन दोनों में से जो जीतेगा वो आज के जीतने वाले में से मुकाबला करेगा। तो बड़ा ही ट्विस्टिंग सा है, बट जो भी है, अभी ये चार टीमें क्वालिफाई कर चुकी है जिसमें है राजस्थान और हैदराबाद, गुजरात और बैंगलोर। तो ये चारों टीम में से जो भी जीतता है आईपीएल, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जीतेगी फिर से बैंगलोर, क्योंकि लास्ट ईयर भी बैंगलोर जीती थी और इस साल भी जीत सकती है, पूरे पूरे चांसेस है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक और मिक्स मैशअप गाना, वो भी AI वर्जन, ओनली ऑन 89.6 FM, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन
1: रोडवेज वाले?
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

डीप कोने मेरे कमरे में डंगा डंगा क्लीन एंड नीट कोने न रात न सुननी बीटे मेरे तो लीड कोने आम जीओडी आना कदे मेरा पीक कोने स्प्लेंडर पे बैठ जगोरी मेरे तो जीप कोने।

टोटल था जी ये गाना। और टोटली एक बात बोलना चाहूंगा कि अब गर्मी से आप लोगों को इस हफ्ते राहत मिलने वाली है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अगर आप लोग गूगल खोल के सर्च करोगे फरीदाबाद का वेदर, तो आप लोगों को दिखाई दे जाएगा कि हाँ फरीदाबाद में आने वाले कुछ दिन में आपको बारिश से मतलब थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल जाएगी बारिश की वजह से। और ये होगा 29 और 30 मई को। तो मैं तो बस यही वेट कर रहा हूँ कि कब आएगी बारिश, कब होगा कुछ, और फिर उसके बाद कुछ दिन तक तो ठंडक ही रहने वाली है। कुछ दिन एज इन जून के स्टार्टिंग के 3-4 दिन तक आपको ठंडक देखने को मिलेगी। और अगर आपके दोस्त आपको बार बार वीडियोज़ भेज के चिढ़ा रहे हैं कहीं घूमने जा रहे हैं वो लोग, तो उनको बोलो घूमो भाई, तुम लोग खूब घूमो मगर हमें चिढ़ाओ मत। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं निकलता हूँ यहाँ से, मिलूंगा आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8। और कल तो वेंसडे है, हफ्ते का वो वाला दिन जब ऐसा लगता है कि क्यों ही आए आज ऑफिस, और फिर ऐसा लगता है कि अरे 2 दिन और ऑफिस जाना है बस, फिर उसके बाद तो 2 दिन एंजॉय कर लेंगे। बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को कुछ साइड हसल के लिए सोचना है, सोचिए उसके बारे में भी। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी से मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए 89.6 FM कुछ हटके। Mixing in the house.

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शोले कर आ गई हूँ इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। आप जल्दी से आ जाइए मेरे साथ ताकि बहुत सारी बातें आप तक पहुँचा पाऊँ। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है फराज। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना, फराज के नगमे यहाँ पर मैं कुछ छेड़ने वाली हूँ, कुछ उनकी बातें जो वो कह गए, उनकी बातें दिल से निकली और लोगों के दिल तक सीधा पहुंच गई। ऐसी ही बातें मैं आपके दिल तक पहुंचाऊंगी। और फराज की बात हो रही है और उनकी वो बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मैं आप तक ना पहुंचा पाऊं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, मुमकिन है खराबों में मिले। और बहुत ही गहरी बात कह दी है फराज ने इस शायरी के थ्रू। वो कहना चाहते हैं कि अक्सर हम जिन अच्छे लोगों को सोचकर उनके पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि यार ये इंसान बहुत खूबसूरत है, जैसा बाहर से दिखता है तो शायद अंदर से भी वैसा होगा। लेकिन यहाँ फराज कहना चाहते हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। हो सकता है कि जो खजाने आप ढूंढना चाहते हैं, जो किसी इंसान की इंसानियत आप ढूंढना चाहते हैं, वो आपको खराबों में मिल जाए। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप ढूंढ किसे रहे हैं। फराज की बातें चल रही हैं और फिलहाल वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। फराज के बारे में बातें चल रही हैं, उनकी खूबसूरत शायरी जो मुझे लगता है हम लोग आए दिन सुन ही लेते हैं, और आजकल तो इंस्टाग्राम पर शायरी का जो एल्गोरिदम आया है ना।

वो बहुत खास है। चलिए कम से कम हम वो पुरानी शायरियों से तो रूबरू हो रहे हैं, तो इसी बात पर ना मुझे फराज की एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी याद आई है कि जहाँ के शोर से घबरा गई क्या, तुम अपने घर को वापस आ गई क्या। यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। ना थी इतनी कजा ताजा मुसाफत, पुराने हम सफर याद आ गए क्या। मेरी गर्दन में बाहें डाल दी हैं, तुम अपने आप से उकता गए क्या। यानी कि फराज इस शायरी में कहना चाहते हैं जो इंसानियत, शायद ये हमारे जितने भी शायर थे और जितने भी कवि थे ना, इनको पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है, और ये शायरी में यही कहना चाहते हैं कि इंसानियत कैसे गायब हो जाएगी इंसानों से, कि यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। और ऐसी ही बातें जारी रहेंगी। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और फराज की बातें चल रही हैं, और फराज की वो शायरी मुझे याद आ रही है यहाँ पर, स्पेशली इस फिल्म के टाइटल को टच करती हुई वो शायरी है। जब कोई इंसान आपको बहुत टाइम बाद मिलता है ना, और वो ऐसी सिचुएशन होती है जब आप उस इंसान को अपना नहीं पाते हैं, और अक्सर आपके दिल में ये बात रह रह कर आती है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, क्योंकि तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का भी हौसला है मुझे। दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। और फराज ने इस बात के थ्रू ना उन हजारों लोगों को एक कड़ा तंज कसा है, जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी ना मेला है, बस उन्हें लोग ही लोग चाहिए। और यहाँ वो कहना चाहते हैं कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, उन्हें सिर्फ एक हम सफर चाहिए, पूरा एक मेला नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। एक मुसाफिर जो है, एक जो इंसान है, वही मेरे लिए जिंदगी भर के लिए काफी है। तो फराज की खूबसूरत बातें चल रही है। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे शो है इश्क बाजियां।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, रहो स्मार्ट, बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ इश्क वाली गीत और बातें चल रही हैं फराज की। और फराज की एक शायरी अभी मैं पढ़ रही थी और मुझे ना इस शायरी से वो बात याद आई कि जब दो लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं, होता है ना अक्सर हमारी जिंदगी में ये बात, मुझे लगता है हर किसी के साथ हो ही जाती है, जब वो जमाने के लिए नहीं बदलते एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं और एक दूसरे से नजरें मिलाते नहीं हैं, नजरें बचाते हैं। इसी बात पर लिखा है फराज ने कि दुख छुपाए हुए हैं हम दोनों, जख्म खाए हुए हैं हम दोनों, तो कभी चांदनी थी और धूप था मैं, अब तो साए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा सर झुकाए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे की चाहत को अब भुलाए हुए हैं हम दोनों, इश्क कैसा कहां का अहद फराज घर बसाए हुए हैं हम दोनों। जब दो लोग एक दूसरे से ही अजनबी हो जाते हैं, इस पर फराज ने बहुत ही खूबसूरत सी शायरी लिखी है। ऐसी ही कुछ बातें और मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

विशाल मिश्रा की खूबसूरत आवाज में गाना है, और देखिए गाने का टाइटल भी खूबसूरत है और फराज की जो ये अगली शायरी है ये भी खूबसूरत है, क्योंकि इन्होंने खूबसूरत किसी शख्सियत के लिए लिखा है जिनसे शायद या तो ये प्यार करते थे या किसी के लिए भी इन्होंने लिखी है कि सुना है लोग उसे आंखें भर के देखते हैं, सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे उसे फलक से उतर के देखते हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को उसे जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। सोचे जब फराज ने इतना खूबसूरत लिख दिया है तो वो शख्स कितना खूबसूरत होगा। और फिलहाल वक्त है यहाँ पर ऐसे ही खूबसूरत से गाने का, गाना है अगला शोर इन द सिटी से साइबो गाना है, और इसके बाद मैं रेट्रो इश्क लेकर आ रही हूँ, कहीं जाइएगा मत, इंतजार कीजिए और फिलहाल गाना सुनिए।

खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए, और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहाँ प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहाँ किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहाँ किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तू बोलता रहे भाई।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां, और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क बाजियां।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
3: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्कबाजियां। मैं हूँ इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में, जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठते हैं राज कपूर से और इसके बाद हर बार राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल। शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजों की दिल दिया गल्ला।

बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दिया गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत। अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी। FM 89.6 द्वारा जनहित।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप। शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब, वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाए, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ, जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली की और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहाँ एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया। और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता ये है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है या क्या फीलिंग है, तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
4: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
3: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
6: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दियां गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके ना।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ कर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मॉनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।

मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: ब्रॉडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
6: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो,

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मॉनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो 6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी. ओ करम खुदा रहा है, ओ करम.

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

0: 99.6 FM
1: कुछ हट गए।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े मुराया मारे गिल को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: जो समझाए उसी की मची धूम जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है, अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना, लतीफा तुम्हें सुनाती है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: खूबसूरत इंसान हूँ। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
1: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
0: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटकर।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वह नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है,
2: सबसे प्रार्थना,
1: आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा न छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट, आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का
2: घड़ी का नियम ले लो।
1: हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, न बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो,
2: हमारी प्रार्थना मान करके।
1: आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए,
2: 12 मिनट दे दो हमारे।
1: ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी,
2: ये माया आपका
1: कुछ। एक नाम त्रेलू कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे,
2: जो न ले सो जन्म ही हारे।
1: हमारे प्रभु बहुत कृपालु है, लाई के सम भजन को मानत मेरु समान को। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहाँ तुम्हारा कोई मित्र है, न यहाँ तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में। भगवान नाम रूपी धन
2: भगवान नाम
1: पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनो रंजन में फंसा दिया,
2: मनो रंजन
1: काम क्रोध की क्रीड़ाएं हमारा नाश करते हैं, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं,
2: ठग का काम हमारे साथ।
1: निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधाद से युक्त हो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं।
2: अपने जीवन
1: पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। प्रार्थना है, किसी की तो मान ले,
2: किसी की तो।
1: ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं, उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है, नाम रूप लीला धाम चारों समान है। वो धाम वासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है, धाम सच्चिदानंद में है। धाम वासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है, यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण, कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत हरिपा